0: juice.
1: I will take some samples from Pakistan. And if we can find a buyer, we can work on it.
0: Bangladesh.
2: 好友的鼓励下，甄选样品成了推进计划的第一步。艾米与弟弟平日住在店铺的二层，他不在时，弟弟则自动升级为临时店长。踏上亲自回乡选品的旅途前，先跟当地老铁打个招呼。老家孩子们最爱的糖果也不能忘。从塔什库尔干出发，乘坐国际大巴，穿越世界上海拔最高的国门红旗拉甫，沿着帕米尔高原的褶皱一路蜿蜒，四五个小时即可抵达艾民的故乡，一个巴基斯坦北部山区的宁静村庄。
3: 你还没哭呀？这个哎，哇，其实都比多大哎。
4: 哎，那么你把一楼什么换那档？都几个呀？
3: 不是阿妈，不是哥，他们火车嘞。
2: 炉火边的团聚，短暂珍贵。
4: 那个生意被提起来的几个，都特别的。
5: 谁搞的？巴菲亚，啥子？
4: 拉什米皮特跟阿维吉。拉什米皮特，克亚萨那卡。
5: 美国就是也土特，但在美国就是。
2: 虽然叔叔退休多年，但老江湖的眼光犀利精准，一句点拨让艾民锚定了芒果汁。这是罕萨山谷里最热闹的巴扎，各式果汁批发商再次聚集。
4: We check it, that how is the taste, how is the quality of the product.
2: 亲自品尝挑选最佳风味是第一步。
4: The food is more difficult than the songs. Chinese would like this.कैसे हैं भाई ये इसके क्या प्राइस है मेरे भाई कुछ कर लें कुछ दे देख लें थोड़ा सा कोई हो सकता है अगर हम आपसे
2: 讨价还价控制成本是第二步
4: I am nervous because it's not a small business थोड़ा महंगा बता रहे हैं
6: कम से कम ना
4: यार देखना बस उसी चीज पे लगे हुए हैं थोड़ा सा कम कर लें
6: उसका वो खरीद
4: नहीं है रिटर्न नहीं देखा ना इसमें कम करें ये मेरे ख्याल 3,900 जो है ना
6: नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ
4: थैंक यू
6: अल्लाह खुश रखे
4: बहुत शुक्रिया ओके बहुत शुक्रिया

0: can work on it. But it's true.
1: 好友的鼓励下，甄选样品成了推进计划的第一步。艾米与弟弟平日住在店铺的二层，他不在时，弟弟则自动升级为临时店长。踏上亲自回乡选品的旅途前，先跟当地老铁打个招呼。老家孩子们最爱的糖果也不能忘。从塔什库尔干出发，乘坐国际大巴，穿越世界上海拔最高的国门红旗拉甫，沿着帕米尔高原的褶皱一路蜿蜒，四五个小时即可抵达艾民的故乡，一个巴基斯坦北部山区的宁静村庄。
2: 你还没哭呀？这个哎，哇，其实都比多大哎。
3: 那么你把一路往什么方向走？都去的呀。
2: 不是嘛？不是卡，还没火车嘞。
1: 炉火边的团聚，短暂珍贵。
3: 那个生意被提起来的去卡，都准备都得。
4: 谁搞了的？巴菲啊，啥子？
3: 咋子米皮特跟阿维兹？啊，咋子米皮特跟阿萨那卡？
4: 美国就是也都得带着美国就是。
1: 虽然叔叔退休多年，但老江湖的眼光犀利精准，一句点拨让艾明锚定了芒果汁。这是罕萨山谷里最热闹的巴扎，各式果汁批发商再次聚集。
3: We check it. That how is the taste? How is the quality of the product?
1: 亲自品尝挑选最佳风味是第一步。
3: The food is more difficult than the songs. Chinese would like this.कैसे हैं ये इसके क्या प्राइस है मेरे भाई कुछ कर लें कुछ दे देख लें थोड़ा सा कुछ हो सकता है अगर हम आपसे
1: 讨价还价控制成本是第二步
3: I am nervous because it's not a small business थोड़ा महंगा बता रहे हैं
5: ये कम से कम ना पड़ेगा
3: यार देखना बस उसी चीज पे लगे हुए हैं थोड़ा सा कम कर लें
6: Inshallah,
3: Inshallah.
1: 与供货商的合